0: प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड फैशन आई क्यू। फैशन आई क्यू लेटेस्ट डिजाइन ट्रेंडिंग आउटफिट्स
1: लेडीज सूट लहंगे गरारे शरारे
0: कुर्ते पजामे शेरवानिया कोट पैंट ब्लेजर अते किड्स फैशन
1: विंटेज ते सफारी लगेज सेट्स दी वड्डी कलेक्शन थीम वेडिंग ले टॉप टेलर टीम भी अवेलेबल फैशन आई क्यू। फैशन आई क्यू हुणे कॉल करो 9054533225 या गूगल ते सर्च करो फैशन आई क्यू। स्पेशल गिफ्ट ले रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देना ना भूलियो।
2: पिज़्ज़ा टू गो बेस्ट पिज़्ज़ा इन द टाउन पिज़्ज़ा टू गो तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा बटर चिकन पिज़्ज़ा चाट पिज़्ज़ा मखनी पनीर पिज़्ज़ा शाही पनीर पिज़्ज़ा कल्ले पिज़्ज़े नहीं जिथे तुसी फिश पकौड़ा

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.

परमात्मा के नाम तो बिना मनुख जो भी मंगता है वह साधन हो सकता है सुख नहीं। सुख केवल तो केवल

0: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
1: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165
1: इंडियन पंजाबी भाषा 115 फादर टोबन रोड ब्रैम्पटन विच भारतीय ग्रोसरी दा भंडार इंडियन पंजाबी भाषा जिथे ताजे फल ते सब्जियां दालां मसाले ते आटा गल की थवाडी ग्रोसरी दी सारीयां लोड़ां पूरियां कीतीयां जांदियां ने। तुसी उहनां दी मीट शॉप तों मच्छी चिकन ते गोट मीट भी खरीद सकदे हो। इन्ना ही नहीं मिठाइयां ते टेक आउट भोजन दा भी प्रबंध है। भारतीय ग्रोसरी मीट ते मिठाइयां लिस्ट दा इक नाम याद रखो इंडियन पंजाबी भाषा।
2: GTA दी बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज नाल मौका मिल रहा है वधिया डॉलर कमान दा ते गड्डी चलाउन दा।
3: अल्फा ट्रांस नु चाहि देने AZ ड्राइवर्स, टीम ड्राइवर अते ओनर ऑपरेटर, वधिया पे पैकेज अते 12 महीने कम ते मान सत्कार भी पूरा कर देने।
2: आज ही संपर्क करो लखी सैनी नु 905-799-1525, 905-799-1525 या विजिट करो 105 ईस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन।
4: ओ सर आ गए,

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कोई भी कार वैन ट्रक का कम हो तो याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल और ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियों नूं लैके जाना रिपेयर दे लई। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ। कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन, ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है, स्पेशलाइज करदे ने इलैक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च, स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-

0: जो बैठ जाइए।
1: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया। हुण तक क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनिया चाहिदियां ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना नु। प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस। बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जांदी है ते खाना भी बहुत वधिया।
0: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। कोई कॉल करो 905-451-2600, 905-451-2600।

0: Rancho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: याद है मैनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
2: महंगाई के इस दौर में मैं पूछता हूँ भाई बहनों क्या आपको $10 फॉर टू कोई दे पाएगा कि नहीं मैं आपसे पूछता हूँ खाना चाहोगे कि नहीं
3: क्यों नहीं खाना चाहेंगे तवा किचन दे रहा है ना अमृतसरी कुल्चा 2 for $10 बिरयानी 2 for $10 न्यूट्री कुल्चा 2 for $10
4: अरे बस बस फोन नंबर और एड्रेस तो दो
1: तवा किचन एट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-455-2600
4: इतना ही नहीं ग्रैंड अपनी स्पेशल और भी आइटम है $10 फॉर टू
5: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे किनिया तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
6: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा ता हो ही नहीं
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
9: रेडियो आवाज रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 PM तक एवरी सैटरडे 10 to 1 PM तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200
2: और स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਹੈ ਬੈਟੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ
10: ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
10: ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜੀ
2: ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਵਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਬੈਟੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ
10: ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਪਰੇਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ 4 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ
2: ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ
10: ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਐਮਸੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ
2: ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ अपने एमपीपी नु क्यों के मकाना च कब्जे करके किराएदार बैठे ने इना तो किराएदारा तो मकान मालका नु आजादी दवाओ जेडे क्राइम करदे ने इना नु फड़ के जेला च डको इना लई सख्त कारवाइयां करो ऑटो इंश्योरेंस दे विच कंपनियां ने लहू पीता होया इना दा लहू बंद करो थोड़ी परेड च असीं आ जांगे थोड़ी सपोर्ट कर दांगे कोई गल नहीं पर तुसीं जिहड़ी चीज दा वादा करके पावर च आए सी ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ
10: ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਕਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆ 6:30 to 8 PM ਤੱਕ
2: ਰਾਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬਸ ਫੜ ਲੈ
10: ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ
2: ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਬੋਲੋ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ
10: October 5, 1967
2: एनर्जी पॉजिटिविटी एक्टिविटी सारा कुछ है लाइफ दे विच
10: हां जी
2: एकदम रिप्लाई ना करा करो किसी नु भी
10: अच्छा जी
2: काली नहीं करनी
10: हां जी
2: ठीक है मन दे साफ हो जीव नाल कुछ गंदा नहीं कहना किसी नु
10: ठीक है
2: बस आ तीन चीजें काम कर लो थैंक यू सो मच और 519 बोलो जल्दी की नाम है थोड़ा हेलो
11: हेलो
2: हां जी जी मन मर्जी नहीं करनी ते जिद नहीं करनी बस
11: थैंक यू
2: ओके जी थैंक यू ते तुसी बोल दो जी क्योंकि मैं लाइंस खाली करनी होर कॉल ना करो प्लीज होर कॉल ना करो कोई भी हेलो
12: हेलो
2: हाँ जी
12: हाँ जी हैप्पी हैप्पी कनाडा डे जी
2: हैप्पी कनाडा डे सामने जो कहता जो किसी ने कहता तू कुत्ता बंदा तो कुत्ता नहीं बन जाना इग्नोर करना कहना कि मैं कुत्ता नहीं बना तू कुत्ता हो गया हूं मतलब जो मैं तेन जवाब नहीं दिता मतलब तू आ जो मैंने तू कहा मोर्गेज दा रियल स्टेट दा इंश्योरेंस दा कार इंश्योरेंस दा इन्हां सारयां दे लई तुहाडा इक टीचर आ तुहाडा गुरु आ जिहड़ा तुहानूं लैके दऊगा लाइसेंस और ए लाइसेंस दी पूरी तैयारी तुसीं अगर करोगे 437 376 55 56 56 ਮਾਸਟਰ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ 437-376-5656 ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਬਲਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਗਾਇਆ 647-222-5501 647-222-5501 ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਨੂੰ 416-500-3200 ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 905-790-1699
13: कमाल का कैच था यार यकीन ही नहीं आ रहा
14: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है
13: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं
14: तुम्हें ये सब कैसे पता
13: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है
14: अच्छा वो क्या वेबसाइट थी
13: saveonenergy.ca/eap
15: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: रात हमें छड़ दिनी है, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते बड़े ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-63-2340। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-765-2340 6477652340। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
3: जी सत श्री अकाल, मैं दोबारा इसलिए हाजिर हुआ कि एक आप जो रोड की जो बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज आपके प्रोग्राम के जरिए सामेइन से बताना चाहता हूँ, सुनने वालों से, श्रोता से, वो ये कि जब कंस्ट्रक्शन का इलाके से गुजरते, मैं देखा सारे ड्राइवरों में बात होती, रुकते और उसको पलट के राइट या लेफ्ट जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा वहां रुक कर देखते आप, तो एक सेकंड के लिए रुको या एक मिनट के लिए रुको, मैं पूछ रहा हूँ क्या कर सकते हैं आप उसको? आप उसकी हेल्प कर सकते हैं उतर के? या एक्सीडेंट हो जाता आप देखते गौर से, बिल्कुल ब्रेक करके देखते, बाद लोगों को देखा कैमरे, नहीं स्लो नहीं होना, वहां से तो तेजी से गुजरना चाहिए, पुलिस का काम है ये बात बोलना, सिटी ऑफ टोरंटो
2: जी, उनको जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ रुक के देखने लग जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है पीछे।
3: नहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ बहन जी, देखने से आप पैरामेडिक है, आप फायर ब्रिगेड है, आप पुलिस है, कौन है, आप पंचनामा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सिवाय आपके, अब जो आपके पीछे जो आ रहा उसको आप खराब कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, ये ना करिए, तेजी से गुजरीजिए वहां से, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। थैंक यू, बस ये बोलना चाह रहा था। थैंक यू।
2: रेशम जी सत श्री अकाल, फटाफट। हाँ जी हेलो रेशम जी, की हाल चाल? ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ 647-765-2340। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: यार इना इंश्योरेंस ने धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल वी नालों ज्यादा ड्राइवर ने तां तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 6473300 3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: आप पंजाबी आ गए
4: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
5: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीज के मर्दा के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल

0: health insurance specialist from Talk Face Insurance Agency.
1: Mama, इस बार मैं भी कृष्णा मनूंगा
2: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
3: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
4: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आए और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाए। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
5: ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ।
6: ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 905-450-2828-905-450-2828 2828
7: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी

Brampton या फिर तीसरी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: Ja, Mann. क्या बात है। और मैं अगे भी गल करता हूं, जेडे सुरीले आर्टिस्ट होंगे, जेडे बहुत सिखे हुए आर्टिस्ट होंगे, जेडे सुर दे नाल जिन्हों की मुहब्बत होंगी है, जेडे सुर नूं अपना गुरु इबादत करते हैं, उन्होंने आर्टिस्टां शो देखने वास्ते जरूर जाया करो। मैनू एक गल याद आ गई है, बार बार कई बार गल याद आ जाती है, खान साहब का शो कराया सी टोरंटो च, मैं जिन्ने भी शो हुए तुहाडे अजीज ने कराए इत्थे पंजाबी विरसा वालों, गुलाम अली खान साहब की गल कर रहा मैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और खान साहब इसे स्टूडियो च बैठे सी ते मैनू कहिंदे रजीत ये बड़ी अच्छी गल आ, सियाने बंदे दी गल्लां बड़ियां कमाल दियां हुंदियां, और कहिंदे हरजीत जे पानी असीं कल्ला पीना होवे सिंपल पानी हो जांदा, जे असी ओ एक चमच शुगर का पा दी ना मिठा हो जाता, जे ओ कड़छी पा दी थोड़ा जा होर मिठा चाशनी का रूप धारण, कहते बोरी सुट दो कि पतीले जो चाशनी बन जाती है, फिर वह हाथ ना लाओ ना वह बड़ी एक तुहानू अलग तो उस चीज़ का जरा कि खुशी हो जाती है, ज उसका एक म्यार वड्डा हो जाता चाशनी का। आर्टिस्ट कहते वह चीज़ है कि जिन्ना ज्यादा रियाज करेगा, जिन्ना ज्यादा रियाज करेगा उस तरह आर्टिस्ट होर मिठा मिठा मिठा मिठा आता जाएगा। ये खान साहब के इतने मैं गल कही, और मैं समझता कि तुम रियाज काफ़ी किया जिस वे, फिर इदा के अलाप जो इस तरह दल पता चल दी है वह फिर आम आर्टिस्ट नहीं करता। अखीर तो अपने जो टोरंटो निवासी ज अमेरिका बफलो च बैठे सू सुन रहे हैं, उन्होंने इस शो बारे की कहना चाहोगे अपने बारे से? टिकटा पुष्पिंदर जी कितों?
2: ticketmaster.ca ते जाके लै सकते हो, तुसीं सर्च करोगे जी, 12 सितंबर का शो आ। सो टिकटा जिहड़ी भी तुहाडी चॉइस हैगी आ उहदे हिसाब नाल सारियां टिकटा अवेलेबल ने,
0: ठीक है
2: जी, शुरू ही कीता हजे। सो प्लीज जिन्हें भी लैना, बाकी कोई किसी भी तरीके की थोड़ी इनकुआरी हो गूगल करोगे सारी इनफॉरमेशन उत्थे हैगी है।
0: बहुत अच्छी गल है खान साहब। अखीर ते अपने वालों जिहड़ा जिन्ने भी साडी कम्युनिटी सुन रही है अपने वालों मैसेज दो सर सारे नूं।
1: हाँ जी, जिन्हें जने सुन रहे हैं सारे नूं मैं कहने जा रहा कि मैं कल्ला कैनेडा दे विच नहीं, अमेरिका दे विच भी, कैनेडा अमेरिका दोनों जगह साडे शो होने जा रहे हैं, ते जिहड़ा अपना पहला शो आ, सब तो पहला शो आ, ते ओ जिहड़े इन्ने ज्यादा दिल वाले बंदे आ, टोरंटो तो खास करके पंजाबियों का गढ़ है ना जिन्हें, टोरंटो दे विच आपां करन जा रहे हैं 12 सितंबर नूं
0: पहला शो टोरंटो शुरू हो रहा है।
1: हाँ जी हाँ जी, 12 सितंबर नूं होने जा रहा है, ये द ग्रेट कनेडियन कसीनो दे विच होने जा रहा है, ते माशाल्लाह बहुत अच्छा है, असीं अपना की उन्हें कहिंदे विजिट भी करनी होनी इंशाल्लाह, देखांगे भी उन्हों, ते उत्थे भी तुहाडा यादां थोड़ियां सांझियां करांगे, वो मैं वीडियो रील पाऊंगा,
0: ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਲੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਸਰ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਿਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ,
0: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।

0: one-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: मतलब
3: हर बाइट विच फुल पैसा वसूल अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या पिज्जा डिपू डॉट सी ए ते ऑर्डर करो
2: जे तुसी बिजनेस करना है तो फ्रेंचाइजी एट पिज्जा डिपू डॉट सी ए ते आज ही अप्लाई करो पिज्जा डिपू स्वाद विच ऑफ टॉपिंग्स नॉन स्टॉप
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਾ ਆਟੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੋਰ ਆਟੋ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-241-1309 647-241-1309 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TFSA RRSP ਜਾਂ RESP ਜਾਂ SIP ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਰਾਈਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-241-1309 647-241-1309
5: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
7: लिसन लाइव वतनो दो रेडियो विद सुखी निचर
8: जी दोस्तों वतनो दूर दे विच आप सब दा निघा स्वागत है 5:30 AM दे उत्ते तुसी इस टाइम वतनो दूर दे हिस्से दे नाल जुड़ चुके हो और हुणे हुणे तुसी देव तातला जी दे नाल जुड़े हुए सी गल्लां बातां सुनियां न्यूज़ वगैरह उन्होंने थोड़े तक साझा कीतियां बाहर दा मौसम भी बड़ा चंगा सो लो दोस्तों एक बार फिर तुहानू कैनेडा डे दीआं बहुत बहुत मुबारकां जिथे भी घूमण जा रहे हो जिथे भी अपने परिवारां समेत तुसीं इंजॉय कर रहे हो मौसम वधिया ते बज दी छुट्टी दा और इंजॉय करो क्योंकि आलमोस्ट ए वीक है जिहड़ा काफ़ी तुहानू लगेगा छुट्टियां वाला माहौल जिहा क्योंकि मौसम भी वधिया ते नाल लोंग वीकेंड भी है सारा कुछ तो इसे वीक दे विच ही है थोड़े लिए और लो फिर अज दे प्रोग्राम जिथे कुछ खबरां दे उत्ते गलबात करांगे नाल दी नाल साडे स्पोंसर दे संदेश होणगे ते अज वधिया वधिया गीत संगीत भी थोड़े लिए लभ के लैके आंदा तुसीं कोई गीत सुनना चाहुंदे हो 9057990999 ते कॉल कर सकदे हो 9057990999 दे उत्ते इंतजार कर रहे हां जी थोड़ी कॉल दी ते लो फिर शुरुआत करदे हां एक प्यारे जे गीत नाल

0: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, होने ही कॉल करो, 416-456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 6457-3381.
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे. हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381.
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com. ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7.